0: जी चल
1: रही है।
0: न्यू मेमो 5 ZR 27713
1: Okay. Here XR 33126 to a 99 Dodge 3419 North Belvedere.
2: 44 to 91 right now. Working on a second.
3: 10-4.